सनम सरदार 2 से आपने सुना विशाल मिश्रा और साथियों का गाया हुआ गीत जानी की कंपोजिशन पर और हमारे लिए पहले भी आप और दूसरे तीसरे और चौथे भी आप जुड़ना चाहें तो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं अपने पसंदीदा बॉलीवुड फिल्मी गीतों के संगम पर अपनी फरमाइश एसएमएस व्हाट्सएप कर सकते हैं 0402-397-064 पर मैं हूं मिर्ची वाला राजेश सुनना ना भूलिएगा रात 8:15 बजे मिर्ची वाले हिट्स 8:30 बजे हिट थे हिट रहेंगे 9 बजे मिक्स टेप और 9:30 बजे दीवाना लेकर आया है

जी हाँ, फिल्म थी रेड टू जैस्मिन सैंडल्स और साथियों का गाया हुआ गीत आपने सुना मिचीवाला एफएम पर. स्वागत है आपका. सुनना न भूलिएगा कुछ ही मिनटों में रात 8:15 मिचीवाले हिट्स. और ये वो गीत हैं जो आपको एक बार नहीं बार बार सुनने का दिल करता है. प्रोग्राम में अब शामिल कर रहा हूँ भीगी सारी. जी हाँ, भीगी सारी है परम सुंदरी की. सचिन जिगर के संगीत पर अदनान सामी के साथ आवाजें हैं श्रेया घोषाल की.

जी हाँ, क़यामत के बाद मेरे हस्बैंड की बीवी, ये है फिल्म और बादशाह के साथ अक्षय, आप सुन रहे हैं मिर्ची वाला एफएम पर बॉलीवुड फिल्मी गीतों का संगम, मिर्ची वाले राजेश के साथ, सुनन बोलिएगा कुछ ही मिनटों में मिर्ची वाले हिट्स।

यह म्यूजिकल एड्स में अब शामिल कर रहा हूं बागी 4 का यह गीत जिसे संगीत दिया है मानी मुद्गल ने आवाजें हैं निकिता गांधी के साथ आपके चहेते बादशाह की

कंफ्यूज हुए होंगे कि बादशाह की आवाज लगते ही नहीं जी हां बिल्कुल नहीं थी बादशाह भी थे साथ में मगर ये जो दो मेल वॉइसेस थी उन्हें जिनकी कंपोजिशन है मनी मुद्गल की उन्होंने ही बादशाह के साथ ये गीत गाया जी हां और अब शामिल कर रहा हूं पनवाड़ी पनवाड़ी यानी सनी संस्कारी की तुलसी

केशरी लाल यादव निकिता गांधी और साथियों का गाया हुआ गीत आपने सुना सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी मिर्ची वाले हिट्स में अब शामिल कर रहा हूं काली ऐनक यानी बात कर रहा हूं सनम सरदार 2 का यह गीत जो आपको एंटरटेन कर रहा है पिछले कई सप्ताह से आपने इस गीत को प्यार दिया एक बार फिर काली ऐनक और मिर्ची वाला एफएम मिर्ची वाले हिट्स में

0: and gentlemen, Mirchiwala FM now presents Bollywood songs at 90.5 FM every Thursday night. Stay tuned to Mirchiwala FM. Behan aur bhaiyo, Mirchiwala FM ab pesh karte hain Bollywood filmi geeton ka sangam 90.5 FM par. Sunte rahiye Mirchiwala FM.
1: जी हाँ, रात के 8:31 हो जाते हैं और प्रोग्राम के सेगमेंट हिट थे हिट रहेंगे में अगर आपको गाना याद आ चुका है तो लिख भेजिएगा 0402397064 पर. अभी आपने जिस गीत को धीरे से उसका इंट्रो म्यूजिक सुना, अगर आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो लेट मी सी कि आप कितने हिट सॉन्ग के फेवरेट आपके कौन से गीत हैं और उनमें से एक गीत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. हियर इट इज़.

दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है आप सुन रहे हैं हिट थे हिट रहेंगे मिर्ची वाला एफएम पर मिर्ची वाले राजेश के साथ जहां एक और गीत ऐसा ही प्यारा सा किशोर जी और लता मंगेशकर जी का गाया हुआ

0: gentlemen, Mithuala FM now presents Bollywood songs at 90.5 FM every Thursday night. Stay tuned to Mithuala FM. Behno bhaiyo, Mithuala FM ab pesh karte hain Bollywood filmi geeton ka sangam 90.5 FM par. Sunte rahiye Mithuala FM.
1: और रात के 9:01 हो चुका है और प्रोग्राम की इस सेगमेंट मिक्स टेप में सबसे पहले शामिल कर रहा हूं एक प्यारा सा मैसेज है आपने लिखा है हेलो राजेश वी जस्ट ट्यून ऑन टू योर म्यूजिक प्रोग्राम एंड वुड लव टू लिसन दिल दिया गल्ला फ्रॉम टाइगर जिंदा है ऑन आवर वे होम आफ्टर लेट नाइट शॉपिंग ये हैं नीरज और मीनाक्षी शारदा जी वाकई लेट है यार लेट नाइट शॉपिंग थैंक यू सो मच नीरज स्टे ट्यून और आपकी पसंद का गीत शामिल कर रहा हूं बहुत ही जल्दी नहीं हियर इट इज़

0: नीरज जी, मीनाक्षी जी, ये है आपका अगला करियोके ट्रैक जो आप प्रिपेयर करना शुरू करें अगले सिंगलोंग सेगमेंट के लिए। चलिए प्रोग्राम में एक और मैसेज शामिल कर रहा हूं और वो मैसेज है जी हां महनाज पटवा जी का, जो हमारे प्रोग्राम को सुनती हैं पेडस्टो से। आप ने लिखा, हाय राजेश, कैन यू प्लीज प्ले तेरी दीवानी बाय कैलाश खेर। इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स होशांग एंड आर्मिन who are visiting from India. They are currently enjoying your program. I'm sure aap aaj bhi hamara program enjoy kar rahe hain aur agar hain to lijiye aapki nazar aapka pasandida geet.
1: Preet ki lat mohe aisi lagi

तेरी दीवानी कैलाश खेर और साथियों का गाया हुआ गीत आपने सुना. आप सुन रहे हैं मिक्स टेप और बहुत सारे फरमाइशें ना कहूँ तो अच्छा वो ऐसे नंबर हैं जो आप ना भी रिक्वेस्ट करें आपको सुनने को मिलते हैं इस सेगमेंट में. ऐसा ही एक गीत मिक्स टेप का जो मेरा अपना धीरे धीरे फेवरेट बनने लगा है फॉर ऑल गुड रीजंस. फिल्म थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल का गाया हुआ ये गीत.

जुबिन नौटियाल रोचक कोहली की ये प्यारी सी कंपोजिशन आपने सुनी रेड टू से आप सुन रहे हैं मिक्सटेप सुनना ना भूलिएगा कुछ ही मिनटों में हमारी अगली सेगमेंट दीवाना लेकर आया है

0: gentlemen, Mirchiwala FM now presents Bollywood songs at 90.5 FM every Thursday night. Stay tuned to Mirchiwala FM. Behnon bhaiyo, Mirchiwala FM ab pesh karte hain Bollywood filmi geeton ka sangam 90.5 FM par. Sunte rahiye Mirchiwala FM.
1: जी हाँ, स्वागत है आपका आज की शाम की जो आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है जी हाँ ठीक पहचाना दीवाना लेकर आया है आप सुन रहे हैं मिर्ची वाला एफएम पर मिर्ची वाले राजेश के साथ

0: ਜਰਾ
1: जी हाँ राजेश खन्ना जी पर फिल्माया गया ये गीत था आपने सुना ओल्ड इज गोल्ड आप सुन रहे हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत दीवाना लेकर आया है

और आज शाम का आखिरी गीत आप तक पहुंचाने का वक्त आ गया है. Until next Thursday night, अपने चहेते राजेश को इजाजत दीजिए. Good night, bye for now. Shabba Khair.

और आज शाम का आखिरी गीत आप तक पहुंचाने का वक्त आ गया है. Until next Thursday night, अपने चहेते राजेश को इजाजत दीजिए. Good night, bye for now, शब्बा खैर.